0: नहीं नहीं कोई कोई कोई कोई बनेगा। तो हम एवर 597-785-993
1: 97 High Court traffic.
2: Good.
1: Pearl Nora 2-2959 from yet parking lot of business ironwork.
2: Yeah.